परमेश्वर नु भी कई नाम देते और तेरा तू फंगा नु भी पीर गया। साहब जी कहंदे ने तीर भी तू ही है, सैती भी तू ही है, तू ही तबर है, तू ही तरवार है, के तू ही तेल है, तू ही बरशी है, तू ही तबर है, तू ही

प्यार करने वाले अपने हथियार लेके अपने शस्त्र लेके आनंदपुर साहब नू चल पे। माझे ते मालवे

अगले दोनों पैर चुक लए ने। घोड़ा जिन्हें दोनों पैर अगले चुके हुए ने। भाई बजीतर सिंह ने एक हाथ नाल घोड़े की लगाम फड़ी, दूसरे हाथ दे नाल और नागनी फड़ी हुई है और जोर दी वगा के एक जकारा छड़ के और नागनी मस्त हाथी दे सिर विच मारी।

एक परमेश्वर की आराधना करो तो फिर देखो तुहाडी किस तरह जीत होवेगी। ते कहंदे ने एही उपदेश साहबा ने सारिआं नूं दित्ता है। और खालसे दा कैसा रोग कैसी नुहार, महाराजा रणजीत सिंह दे वेले अफगाना ते जद सिंघां ने हमला कीता ते कहंदे ने सरदार श्याम सिंह अटारी, कवर नौ निहाल सिंह और सरदार हरि सिंह नलुआ सोहणे दाड़े चमकदे चेहरे शस्त्रां नाल सजे हुए सिंह घोड़ियां ते सवार जद इन अफगाना

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड़ दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पैसा भाई गुरदास जी कहिंदे ने

साध संगत ए मैं जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अज समाज केवल इन्हां जातां नूं ही मनदा है, जोत नूं नहीं मनदा। तो ये गल इसलिए आरंभ कीती है कि जिन्हां असीं जातां नूं नीवां आखने आ, आपां वेखीए तां असीं भी मालक दी निगाह विचों किन्ने उच्चे ने। फिर नीवां तां उह हो गया ना जिहड़ा मालक दी निगाह चों गिर गया, जिहड़ा मालक दी नजर च नहीं चढ़िया। वह तो सदा उच्चा है जिदे ते मालक दी नजर हो गई है। कहिंदे ने हुण कबीर जिस वेले कबीर इस भगती वल मन लियाया, मन ख्याल कीता, ते गल फिर सामने उही आ गई, उच्चियां जातां वाले वड्डे जातियां वाले दुरकारन लग पै। हुण कहिंदे ने कबीर दे मन अंदर ख्याल आ गया, क्यों ना मैं अपना गुरु स्वामी रामानंद जी नूं बनावा। कहिंदे ने हुण स्वामी रामानंद जी शूद्र दे मत्थे नहीं लगते, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਬਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ,

0: क्यों कर में ले चिथड़े हीरा लाल अमोल पलिता।
1: भगत भगत जग बजी, सारे जगत विच भगत भगत होने लग पे है। क्यों? चाहो चकां दे विच चमरेटा पाणा गंडे राह विच।
0: काम की है पाणा कहिंदे ने पैर दियां जुतियां गंढदे हन चुराहे विच बैठे,
1: पर ख्याल करना ये केवल जुतियां नहीं गंढदे, ये टुटे लोकां दे मन गंढदे हन।
0: पाणा गंडे राह विच कुला धर्म टोए टोर समेटा, कुल दा धर्म की है काम की है। टोर पशु डंगर मर जाना खाल उतार के जुतियां बनानी है। रविदास जी कौन ने ज्यो कर मैले चिथड़े, मैले कपड़िया दे विच हीरा लपेटिया हुआ है। ज्यो कर मैले चिथड़े हीरा लाल अमोल पलेटा। अमोल जिदा मुल कोई नहीं है, ऐसा हीरा है भगत रविदास। फिर कर दे की नहीं,

बनारस कर गंगा थेटा। बनारस तक ते कहिंदे संग नाल नाउण आ गए। जिस वेले नाउण वास्ते आए वेखदे की ने कि बड़ा सुंदर मेला लगा है। ते मेले विच लोग दान पुन कर रहे ने, ते पंडित जी बैठे दान होक रहे ने। कोई सोना दान कर रहा है, कोई चांदी दान कर रहा है, कोई रुपा दे रहा है। अपनी वक्त अनुसार हर कोई दान ते लगा है। हुण भगत जी कहिंदे ने कि मैं भी तट ते आया, मैं भी कुछ दान करा, पर देखना भगत जी दे दान करन दा ढंग कैसा है। भगत जी दान इसलिए दे रहे ने कि उन्हां लोगां नूं समझा सका जिहड़ा दान तुसी पानी विच सुट रहे हो ओ भाई ओ किसे अर्थ नहीं लग रहा। क्रांतिकारी भगत उन्हां नूं ज्ञान देंदे हुए ए गल समझांदे ने

सेवम गुरु प्रसाद जप आद सच गॉड सच है भी सच नानक ओसी भी सच एकंकार सतनाम कर जपुर्ग निर्भो निर्वे अकाल मूर्त आजूनी

देवां दे उपमा महा कलगी दरपाशा केंद्र ने अकाल पुरख तू राजयां दा राजा तू सूरजां दा सूरज तू देवतियां दा देवता तेरी उपमा बड़ी महान है।

ऐसी उड़ारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारियां दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नूं बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जन साहब अपने

दुष्ट दमन जी उस बेबान विच बैठे ने, वो बेबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इत्थे आराम कीता, इत्थों ए बेबान तुरे आ किथे जा पहुंचे है। गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले आत्मक मंडला वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडला वाले खुश हो रहे ने। अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनस्पति खिड़ गई, मानो अज दुनिया दा भार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़ियां बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, ते कलगीधर पातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती पे होया। मुरपित पूर्व

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारा संगता दर्शन करने वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है अपने चरणा दे विच, जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

राग गौड़ी मालवा विच ऋषभ धैवत कोमल ते मध्यम तीबर लगदा है। इस राग दे आरोह विच निषाद अते अवरोह विच धैवत वर्जित हन। इस राग दी जाति शाड़व शाड़व, वादी ऋषभ, संवादी पंचम अते समा दिन दा चौथा पैर है। इस राग विच हर नाम लेहो मीता लेहो शब्द दा गायन कर रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह।

सब में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है। सब में जोत जोत है सोए, जिवें तू सर्व व्यापक है, सर्व व्यापी है, हर थां रमिया होया है, इसी तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस तै चानन सब में चानन होए, कहिंदे सारिया अंदर चानन प्रकाश हे मालक तेरी जोत लाई है। तिस कै चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारिया अंदर प्रकाश है। एक चानन है, पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असीं गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जदों गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, तो फिर की हुंदा है,

पारिक अनक लख बरिया अन थोर नहीं जह जाता। चंचल मत चंचल मत पारिक बपुरे की सर्प अगन कर मेले माता पिता कंठ लाए राखे।

वणजी 24,000 श्वास रोज दे साडे खर्च होंदे हन, असी कदे नहीं विचारिया भई कितने कु सफल होए हन, कितने कु असी तंदियां विच उजाड़ दिते हन। साडी हट्टी लुटी जा रही है, श्वास जाया जा रहे हन, पर असी बेखबर होके विचर रहे हां। इसलिए हजूर बख्शिश कर दे हन, भाई तू जाग, ए जितने तेरे पसारे हन किसे काम नहीं आने वाले। मनुख ने दो प्रसादे छकने हन, वस्त्र पहने हन और रहना है। इतनी को लोड़ मनुख दी है, पर पसारे कितने पसारी बैठे। हजूर कहते हैं नाम तो बिना

कुछ मनी बैठे जिस तरह कोई किसी घर विच रहिंदा होवे ते अपने आप नूं मकान ही समझ लवे, जिवें ड्राइवर अपने आप नूं मोटर समझ लवे, असी भी इसे तरह साडा संसार ते आउण दा जो शुभ मनोरथ है वो कुछ होर है, वो है सत दी कमाई का।

मन दा गुलाम होयो तां साडे मन दे साडे गुलामां दा गुलाम ही तू होयो ना। जिन्हां ने अपने मन नूं गुलाम बना के चंगे पासे मन नूं लाया, आत्मा नूं कीर्तन दा भोजन दिता है, वो सदा लई अमर।